सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा।

बोली सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत।

0: संगत कैसी जानी है।
1: केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो दी संगत।
0: सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है।
1: ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत।
0: साध संगत मिल होए तराबा,
1: ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी,

फिर गुरु दसदा है जीव तू संगत विच जा, जो संगत विच जाएगा सुख ही सुख मिलेगा, दुख तेरे नेड़े नहीं आवेगा, संगत करन दा यही ते लाभ है। ते साहब आखदे ने मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरे, उतर गए ओदा उधार हो गया, जिहड़ा संगत दे नाल आ मिले है ते जिहड़ा संगत नालों टुट गया वह काला हो गया, जे कोई संगत नालों निखड़ गए, संगत नालों संबंध टुट गए, गुरु नालों वखरा हो गए, गुरु तो बेमुख हो गए, ते जिहड़ा गुरु तो बेमुख हो जाए वह काला हो जाता।

और भी बढ़िया पंक्तियां महाराज जी की। सुख संताकरण दुर्मत धरण किलविक हरण आसरण, महाराज कहते शस्त्र संतान नु सुख देंदा है, उन्हां दी रखवाली करदा है। सुख संताकरण दुर्मत धरण किलविक हरण आसरण, जय जय जकारण सृष्टि उवारण मम प्रतिपारण, जय देवन जय देवन जय देवन। अकृपान खंडो खड़ग कुक तवर अर तीर सह सरोई सहवी यही हमारे तीर। देखो महाराज ने कहना सत्कार किया जे शस्त्र

मैं केवल इतनी गल तुहाडे दिमाग तक पहुंचाउणी चाहना गरीब कि गुरु गोबिंद सिंह कौन ने। कहिंदे कई भीड़ां ते मुगलां दीआं जड़ां पुट्टियां गईआं पर राय कल्ले दे परिवार दा वाल नहीं विंगा होया। इक सतगुर दा बचन उस श्री साहब नूं सत्कार नाल विराजमान पूजा सत्कार ध्यान रहे। कहिंदे समां आया ये राय कल्ले दा परिवार सत्संग चढ़ाई कर गया ते हुण अगों कौन है राय अहमद। कहिंदे उन्हां ने भी उसे तरह वो गुरु साहब का जिहड़ा निजी शस्त्र है ना उसे तरह सत्कार उहदा रख्या चढ़दी कर। कहिंदे समां आया वेखो राय अहमद भी चढ़ाई कर गया ते हुण कौन आया राय कोट। ये सब तुरी आ रही उन्हां दी अपनी कोले। कहिंदे समय अनुसार उन्हें भी जिन्हें भी 25 साल किन्ने कटे। कहिंदे जो ओ चढ़ाई कर गया कि फिर आ गया जी राय इलियास। उस तरह गुरु साहब के निजी शस्त्र की सत्कार कर रहा है। कहिंदे एक दिन राय इलियास ने मुगलों के कहण से मुसलमानों के श्री साहब विराजमान करके बस का सत्कार करते हो। कहते कुछ जदों संगत भैड़ी हो गई तो उन्होंने आख्या इनू गले च पा लिया सतनाम। कहते राय इलियास ने जदों गुरु गोबिंद सिंह के शस्त्र नू गले च पा लिया जंगल वाल चला गया शिकार कर एक हिरनी दे मगर घोड़ा लाया। इहो ही कलगीधर महाराज जी की जिहड़ी श्री साहब कढ़ी सत्कार छड़ता। ते कहिंदे जदों हिरनी ते वार करन लगा ओहो पुट्ठी हो के श्री साहब जिहड़ी इहनू अपने आप नूं वज गई ते नाल ही इहने शरीर दा चोला छड़ता। ध्यान देना पूरे दा बचन कोई संभालदा तो खुशी है नहीं संभालदा तो देखो पूरा। कहिंदे राय इलियास इहदी जदों मौत हो गई तो इहदी माता नूरुल्ला उहदा जिहड़ा एक पालतू पुत्र उहनूं बिठाया गया। कुछ समा उन्हें राज कीता आओ नाल नाल पढ़े प्यार

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर्स नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सो, देही नू काढ़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है, तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए हो। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे, पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू, फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू, एंड देन हाउ द सेकेंड थॉट इज फॉलोड बाई। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है, असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं ते उस उन्हां नूं देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देयर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते असवारी करो, भाव के उन्हां नूं इनडिफरेंट होके, उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्हां नूं देखना है। अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नूं देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नूं करना है। अपने विचार अस्वारी कीजे, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनूं देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नूं देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स दा गैप, अते उस गैप दे विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग है। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

0: तेरे को सत बजे नहीं गया जाता आखो सत
1: केंद्र एक बार असि कह बैठे लेकिन लेकिन लेकिन बाबा जी ने फिर ताड़ना की केंद्र बिल्कुल ठीक लेकिन कितने लिखे गुरु ग्रंथ साहब आखो साधना गुरु ग्रंथ साहब के कितने लफज नचोड़ कढ़ो गरीबी की पढ़ाई गरीबी सत बचन की पढ़ाई निम्रता की पढ़ाई कहन लगे सानू कहते फारसी सिख गया लेकिन बिल्कुल ठीक इत्थे ते सत बचन की पढ़ाई कोई गल कहनी सत बचन जी अच्छा जी

0: भाई जोगा सिंह पहुंचे, हजूर ने दूर ही तक देखे प्यारी सात संगत, जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गए। आ जा जोगिया साढ़े कोल आज। भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान, मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे। भाई जोगा सिंह साहिबां दे कोल पहुंचे, भाई जोगा सिंह भाई आखा जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर नार परिवार नु छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार भी। जोगा सिंह सोच मन, मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी, जे अंतर जामी होंदा तो हुशियारपुर की करतूत जानदा, जे हुशियारपुर की करतूत जानदा होंदा तो मेनू सजा दे, पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर। जे गुरु अंतर जामी नहीं, जे गुरु इथों दी नहीं जानदा तो मेरी दरगाह च किवें बां फड़ेगा, बारह साल एवें गुरु की सेवा की। आखो सेवा अंतर जामी सतगुरु सोचण लग, सिख नूं काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा, गुरु नूं पता है शरदा तू हीण पिया हुंदा। हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तकिया, इतना नूर सी साहबां दे चेहरे ते, नजरां नीवियां हुण। हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं देंदा, तकदा है फिर अखां। तीजी वेरी जसेले साहबां ने किया जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने जसेले कलगीधर पातशाह वल तकिया, भाई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबण लग गया कि तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोहणे तखते बहण वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हथ रो पिया भाई जोगा सिंह, पातशाह मैं पापी हां मेनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो। आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत च पोल न करो। हजूर कहण लगे जोगिया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहण लगा तेरे मन च फुरना बड़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं, मैं तो सब कुछ हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप, ते तू कहना गुरु नू पता है नहीं। तो भाई जोगा से कहण लगा महाराज ए भी चंगा होया, अज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कहण लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमाइश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया ते माध गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जोगिया मेनू अगे भी सिखा ने बड़ा अजमाया, पर मैं इम्तिहान च पूरा उतरिया, अजमाइश च पूरा, पहले जामे विच सिख ने अजमाया, बाबर दी जेल च अरदास की थी, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दी चक्कियां पीटी, पंजे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया कि चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै। तो जो गया मैं संगतां दा हुक्म सिर मथे रखे, जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू दे घर जांदा चंदू मेरे ते फुल्लां दी वर्षा करदा, पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे घर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बलदी रेत पाई, पर मैं अजमाइश ही पूरा बिधि चंद ने मेनू अजमाया, छेवे जांदे दुशाले लैके भज्जा जांदा पिछे बादशाह दी फौज आ, बिधि चंद ने छेवे पातशाह दा ध्यान करके पठियारी दे बलदे पट वी छाल मार। हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ, छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंघा ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो। हजूर कहण लगे जोगिया फिर बिधि चंद नूं तत्ती वारी लगन दित्ती, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
1: ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ।

0: बादशाह मेनू बख्श, मैं भूल गया। हजूर कहने लगे, जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखां थानी पानी बन के बाहर नहीं निकल। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहने लग गया कि गुरु नू पता ही कोई भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिख दा मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे, जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे, जोगिया जी भूल गए ता जा तेन बख्शिया। आखो श्री बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी ध्यान न पढ़ो।

अनंसाव पार करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चों वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंसाव पाठ सारे मिलके करिए गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेज गाउण अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग की दात बख्शो।

तब इस तुकनो गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

मन देवते जितो गए फिर कोई गल नहीं, कोई काम क्रोध लोभ मोह कर मन की गल है। मन नाल हमेशा रहिंदा, जिदा होमे काम क्रोध लोभ मोह कर रहिंदे आ, तुसी कदी छड नहीं सकते, पर तुसी उहनू संभाल के रख सकते, तुसी उहनू झटका सकते। और यह सब कुछ दसदे हैं कि जो जंग ते जांदा है कोई मतलब डरना नहीं है, क्योंकि रब ते रब ते पहला साडे दे विच है। यह हुण राग मालकुंस ते असी पहला राग दुर्गा बोलिया ना, दोनों एको ही है, कोई फर्क नहीं है, राग सारे एको ही है, आनंद है बस। मैं बार बार राग के बारे तुहानूं दसदा कि इत्थे वैसे दुनिया के हाले साडे गुरबाणी संगीत के राग ते कोई स्ट्रेस नहीं है। जो असी कहिंदे थोड़ा स्ट्रेस लईए, साडे नाल प्यार है, कोई सिख्या ज्यादा सिखदे नहीं राग, है कोई मुश्किल गल नहीं।

बाबे ने आख्या ओए चंद्रया असी कुछ तेरे कोलों मंगण नहीं दे आए असी ते तेनू प्यार करके तेरी मित्रता करके तेनू मिलन वास्ते आए हैं। बाबा जानी जान है बाबा ते लोक परलोक दी सोझी रखदा है बाबे दे ओले की हो सकदा है। गुरु नानक दरवाजे ते खलोते आवाजा मार रहे ने ओए मित्रा चंगा तू मित्र है इन्नी प्यार नाल तैनू मिलन आए हां ते तू अंदर लुकिया बैठा है। संसार है घर परिवार दे आखे लग के ए जीव कई बार बुजुर्गां दे नाल इहो जिहियां गल्लां करदा है पर सतसंगियो बाबा नंद सिंह जी बख्शिश करदे सन जिहड़ा इंसान अपने बुजुर्गां दा सत्कार नहीं करदा बुजुर्गां दी संभाल नहीं करदा वो कदी भी गुरु नानक दी नजर विच बख्शिया नहीं दे जांदा।

भी ऐसा होना चाहिदा है। जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे। ते साई फरमान करदे हन कि ऐसा शाह इको एक परमात्मा है, जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा। ऐसे परमात्मा बारे, ऐसे शाह बारे साहिब फरमान कर रहे हैं।

जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावा। उच्ची देनी आवाज मारी, भी है कोई हो जा जेड़ा मेरा पार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा।

पाक पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारे अनक बहु पाती छोटे कथु नाही एक बात सुनता की ओटा सात संग मिट जाहि कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पया पद निर्वाणी।

मैं तेरे रस रस गुण गावा, मन करके तेरी मैं शिव सला करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाने, एक है रस रस गुण गाने। गुण गाउंदिया तो भाई कई बेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्हां नूं तां आपे दी भी सुध नहीं रही, उन्हां नूं तां अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया।

मोरे हृदय बसो गोपा। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा भाई जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक वस्तु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे 52 कविया विचों श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उना नू गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे नंद लाल साडा जी करदा है कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नूं कह रहा होवे बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है ते मेरा जी करदा है तू कुछ मंगे। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा नंद लाल साडा जी करदा तू कुछ मंग। तां भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते इस कीट नू कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनू ही तो कह रहे हां तां फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते ए कृपा करो के दीते अंबरा लज्जते दीदार बख्श। ए दीदे ए जो अखा हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन पर इना विच रस नहीं है, वो रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए जे तुठे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन भी भुख लग पवे। क्योंकि भुख ना लगे तां कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन ओ चंगे नहीं लगदे, ते जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब कहंदे हन हे कलगीधर पातशाह जे तुठे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए। क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकदे। उचारण करो श्री। इसलिए भाई साहब ने ए दात मंगी दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, छीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शोक दे। भाई साहब कहंदे हन कि मेरा दिल विशे विकारां दी अग विच पुज चुका है ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है ना, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए इस पुज चुके होए दिल नूं प्रेम ला मैं तेरे चरणां विच जुड़िया रहां, मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया रहे। ए शरीर देश होवे परदेश होवे घर होवे बाहर होवे दुख विच होवे सुख विच होवे हे वाहिगुरु मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया होवे।
दीदाए अंबरा लज्जते दीदार बख्श, छीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी दा तौक दे। तौक कहंदे हन पटे नूं, ते भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन मैं तेरे दर दा कूकर हां, ते ओ कूकर मालक दा खवांदा है जिस कूकर दे गल विच पटा होवे। आख्या मेरे गल विच पटा पा के मैनू आप दा बना दे। ए पटा केड़ा है जो भाई साहब नंद लाल ने कहा, आख्या बंदगी दा पटा मेरे गले विच पा। श्वासां दे अंदर बार आंदियां जांदियां मैं जपदा रहा श्री वाहिगुरु। आख्या होर भी कुछ मंगना है, ता भाई साहब कहंदे ने कुछ होर भी मंगना है, क्योंकि आप तुठे हो। आपने क्या कुछ मंग, मैं तदे ही तो मंग रहा। आख्या मंग भाई होर की मंगदा है, ता भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, तेरे मिलन दी शिक मेरे हिरदे विच वसी रहे। क्योंकि जिस हिरदे विच ईश्वर दे मिलन दा प्यार नहीं, ओ हिरदा हिरदा नहीं है, ओ ता एक शमशान भूमिका है। जिस तरह शमशान भूमिका विच मुर्दे जलदे रहिंदे हन, आख्या ओ हिरदा भी ऐसा ही तपदा रहिंदा है, जलदा रहिंदा है, जिस हिरदे विच साईं दे मिलन दा प्यार नहीं है। उच्चारण करो श्री हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चशम मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम। भाई साहब कहंदे ने हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, जे प्रसन्न होए हो तो फिर जितने मेरे शरीर दे रोम हन इन्हां नूं जीभा ला दिओ। हर शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम हुंदे हन। ते भाई नंद लाल जी कहंदे हन कि हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, क्योंकि असी कलयुगी जीव हां, ते कलयुगी जीवां दी उम्र भी छोटी है, दिन रात भी छोटे हन, ते मैं चाहुंदा हां थोड़े समय विच मैं तेरा बहुता जस करां, वध तों वध तेरे गुण गावां। इसलिए मेरे हर शरीर दे रोम ते जीबा ला दे, ते फिर एनिया जीबा नाल मैं की करा। आख्या हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चशम मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम। ता बिगोयद विश्व हकरा दम बादम, दम बादम मैं तेरे गुण गावां, ते की मंगा मैं ए मना तेरे कोलों के रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हिरदे।

आप केस सुखा रहे हो, अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हन, ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान वी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मताबे गमजे मई गाने यू, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा। मान में आरे

लाया प्रीतम आपने तन मन होए निहाल जा गुड़ देखा श्रवण। मेरा तन मन निहाल हो गया, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो। जिथे मेरी नजर जा टिकी है तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन बलिहार जांदे हन उना दा ए लोक भी सुखी होंदा है परलोक भी सुहेला होंदा है। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमते यकतार मुए यारे मां मान में आरे मताबे गमजे मैगाने ऊ यक निगाहे जा फिजाए बस बबद दरकारे मां गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद रंग हाय मुख्तलिफ दारद बुते तैयारे मां। राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करदे हां कि तेरे चरणा नाल साडी सांझ बन जावे साडी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी, मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी नु फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नु भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार श्वेखिया सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नू मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेन इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। इहदे वर्ग महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा है। दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

और ऋषभ का मेल देखना। पापा पापा पापा परे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ती धर्म दृग तांग दागड़ती दिम दिरना, बागड़ती ब्रिकते बांग तागड़ती तोम तोम तोम दिरना, दागड़ती दे ताल कागड़ती कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ती दे ताल कागड़ती कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानी कुम किरना नाल दे ताल दागड़ी दे ताल। जे तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाना, ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वो कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जड़ा है वो राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल के विच गायन करना जड़ा है वो कीर्तन। तो गुरु साहब कहंदे दागड़ी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

0: अमृतसर सतगुर सत भक्ति जितनाते कौआ हंस होवे
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर नवलाया सब लाथे किल वेख पंग
1: सतगुर पुरख।

सरवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासू शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।